या दिलाते कि आप अभी रेडियो आवाजी ताजी को सुन रहे हैं। कार्यक्रम के इस पात में हम एक गाने के बारे में बताते हैं जो हमारे राष्ट्र के इतिहास को दर्शाता है। वो कहता है, मैं आर्यन हूँ।

गाना मैं आर्यन हूँ लोगों के प्रिय गानों में से एक है कि रेडियो और टेलीविजन द्वारा नियमित रूप से दिखाई जाती है। इस गाने को देश के लोग मरियम जलाली ईरानी कलाकार से सुनकर परिचित हुए। इस गाने की पैदाइश कैसी हुई है आइए जानते हैं।

0: Masudi Sipantka Janam San 1943 mein Khurasan ke paschim Serbisha zile mein hua. Uska pita sainik tha aur Sipant saab ne bhi school ke baad police vidyalay mein padhkar Iran police ke vibhin paas mein seva ki. San 1980 usne America jaake palayan kiya. Sipant bachpan se shayari se ruchi rakhta tha. Uski shayari Iran ke samachar patra aur patrikaon mein prakashit hoti thi. अमेरिका में भी उसने अनुसंधान और अध्ययन को नहीं छोड़कर विभिन्न शायरी पेश की है साथ ही वो अमेरिका के फारसी भाषी रेडियो और टेलीविजन में सक्रिय रूप से काम करके विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेता था मैं आर्यन हूँ कविता को लिखने के बारे में मसूद सिपान ने एक ताजिक पत्रकार के साथ इंटरव्यू में कहा मैंने मैं आर्यन हूँ की कविता को ताजिकिस्तान में लिखा और इस तरक्षण के एक होल में ताजिकिस्तान की सरकार के लिए प्रस्तुत किया मैं ताजिकिस्तान को फारसी भाषी देशों के दिल और हृदय मानता हूँ ताजिकिस्तान का भूमि अगर छोटा हो पर उसका इतिहास और राष्ट्र बहुत बड़ा है उसी इंटरव्यू में उसने कहा मुझे उम्मीद है कि साल के 6 महीने मैं ताजिकिस्तान में रहूं और कई विद्यालयों और रेडियो या टेलीविजन चैनल में काम कर सकूं। साथ ही आशा है कि ताजिकिस्तान के अभियायत्र मुझे मिलेगा
1: از اوج قله

जैसे हमने बताया, कविता मैं आर्यन हूँ मसूदी सिपान द्वारा सन 2002 ताजिकिस्तान में लिखा हुआ। इसके बाद इस कविता को अमेरिका लेकर उसे फारसी भाषी कलाकार मरियम जलाली और उसके पति को गाने के लिए पेश किया। श्रीमती मरियम जलाली का जन्म सन 1948 को ईरान में हुआ। मरियम जलाली अध्ययन करने के लिए अमेरिका जाती है, पर ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद इस देश में कैलिफोर्निया में रहती है। मरियम जलाली ने सन 1995 कला कार्य शुरू करके पहले बार एक फिल्म है जिसका निदेशक बहमान जरीनपुर था भाग लिया। उसके बाद

उसने बहुत दूसरे फिल्मों में भूमिका निभाई। मरियम जलाली के व्यवसायी मुनीम था और इस क्षेत्र में उसने विभिन्न कार्यालयों और कंपनियों में काम किया है, पर उसकी आवाज भी अच्छी थी और उसने कई गाने गा के दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया, विशेष रूप से दरो नफस की भी मीराम दरो अरजुए तुबोशम, नाजुक दिल, बारिश और मैं आर्यन हूँ गानों द्वारा बहुत लोकप्रिय हुई है।

प्यारे सुनने वालों, ये थी जानकारी एक गाने के बारे में। हमें आशा है कि आप इस गाने में आर्यन हो की उत्पत्ति और इतिहास से परिचित हुए। आप खुजा सई मिर्जोवाली द्वारा गाए गए इस गाने को सुनकर आनंद लेते हैं।

या दिलाते कि आप अभी रेडियो आवाजी ताजी को सुन रहे हैं। कार्यक्रम की इस बात में हम एक गाने के बारे में बताते हैं जो हमारे राष्ट्र के इतिहास को दर्शाता है। वो कहता है, मैं आर्यन हूँ।

गाना मैं आर्यन हूँ लोगों के प्रिय गानों में से एक है कि रेडियो और टेलीविजन द्वारा नियमित रूप से दिखाई जाती है। इस गाने को देश के लोग मरियम जलाली ईरानी कलाकार से सुनकर परिचित हुए। इस गाने की पैदाइश कैसी हुई है आइए जानते हैं।

0: Masudi sipant ka janam san 1943 mein Khurasan ke paschim Serbisha zile mein hua. Uska pita sainik tha aur sipant saab ne bhi school ke baad police vidyalay mein padh kar Iran police ki vibhin paas mein seva ki. San 1980 usne America ja ke palayan kiya. Sipant bachpan se shayari se ruchi rakhta tha. Uski shayari Iran ke samachar patr aur patrikaon mein prakashit hoti thi. अमेरिका में भी उसने अनुसंधान और अध्ययन को नहीं छोड़कर विभिन्न शायरी पेश की है साथ ही वो अमेरिका के फारसी भाषी रेडियो और टेलीविजन में सक्रिय रूप से काम करके विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेता था मैं आर्यन हूँ कविता को लिखने के बारे में मसूद सिपान ने एक ताजिक पत्रकार के साथ इंटरव्यू में कहा मैंने मैं आर्यन हूँ की कविता को ताजिकिस्तान में लिखा और इस तरक्षण के एक होल में ताजिकिस्तान की सरकार के लिए प्रस्तुत किया मैं ताजिकिस्तान को फारसी भाषी देशों के दिल और हृदय मानता हूँ ताजिकिस्तान का भूमि अगर छोटा हो पर उसका इतिहास और राष्ट्र बहुत बड़ा है उसी इंटरव्यू में उसने कहा मुझे उम्मीद है कि साल के 6 महीने मैं ताजिकिस्तान में रहूं और कई विद्यालयों और रेडियो या टेलीविजन चैनल में काम कर सकूं। साथ ही आशा है कि ताजिकिस्तान के अभियंत्र मुझे मिलेगा
1: از شهد ماهتاب از او

सुंदरगाना में आर्यन हूँ का पैदाइश इसी तरह हुआ है। ये कहना जरूरी है कि मसूदी सिपंद की शायरी इस कविता मैं आर्यन हूँ से सीमित न होकर साथ ही उसकी कविताओं को प्रसिद्ध ईरानी गायकों सियोवुश और दोरियुश जैसे गाते हैं। इस गाने को बहुत गायकों ने गाया है। मरियम जलाली के

प्यारे सुनने वालों, ये थी जानकारी एक गाने के बारे में। हमें आशा है कि आप इस गाने में आर्यन हो की उत्पत्ति और इतिहास से परिचित हुए। आप खुजा सई मिर्ज़ोवाली द्वारा गाए गए इस गाने को सुनकर आनंद लेते हैं।

0: de la khiyani maschume ek ladki ka janam hua jiska dil mein bade bade sapne the aur naam hai uska junona junona ne bachpan se hindi bhasha aur hindi sanskrit mein ruchi vyakya aur tajik rashtriya vishwavidyalay ki hindi faculty mein pravesh liya aur sikhna shuru kiya samay bita aur taqdeer usse ek dusre desh le liya pakistan pakistan ki uski yatra sirf ek desh se dusre desh mein jana nahi tha balki uski zindagi ke ek naye adhyay ki shuruaat thi naya माहौल अलग भाषा अलग रीति रिवाज ये सब एक ताजिक लड़की के लिए आसान नहीं था लेकिन उसने धैर्य और मजबूत इरादे के साथ नई समाज में अपनी जगह बना ली यहाँ जुनूना ने अपनी जिंदगी के बारे में पाकिस्तान में इस प्रकार कहती है
1: अस्सलामुअलैकुम मैं इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान के मुल्तान शहर में रहती हूँ मैं 15 साल हो गए 2009 से मैं यहाँ रहती हूँ और ये मुझे अपने मुल्क जैसे लगने लगी है जाहिर है जहाँ इंसान 15 साल गुजार लेता है तो फिर वो गैर मुल्क नहीं होता है वो अपना मुल्क जैसा होता है जब मैं पाकिस्तान आई थी 2009 में तो ये मुझे अननोन कंट्री नहीं थी बिकॉज मैं आपको पता है मैं ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में पूरा 5 साल का कोर्स करके इनकी लैंग्वेजेस सीख के इनके माहौल रहन सहन किस तरह पहना हर चीज को सीख के आई हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान रहा है क्योंकि जो बिल्कुल अननोन होते हैं जो जबान भी नहीं जानते हो और कल्चर के बारे में भी नहीं जानते तो उनके लिए शायद डिफिकल्ट होना चाहिए बट मेरे लिए बहुत अच्छा लगा आसान इसीलिए हुआ मुझे इनके बारे में सब कुछ पता था और मजीद आके यहाँ मैं बहुत इम्प्रूव भी कर लिया जो जो चीजें सीखनी होती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा आसान भी था रहना अब तक माशाल्लाह जिंदगी अच्छी गुजर रही है जब हम पाकिस्तान आए थे तो किसी को यकीन भी नहीं था कि ताजिकिस्तान से इतने दूर से मतलब कैसे ये पॉसिबल है कि आए हैं शादी किए जिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात होती थी वो फौरन उठ के मुझे सलूट करते थे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है और हमें यकीन नहीं आ रही है कि मतलब आप इतनी दूर से आए हैं और मेन जो बात है कि आप 15 साल से अब यहाँ पे रह रहे हैं तो ये जो है सलूट करते हैं क्योंकि आसान नहीं है किसी को अपना मुल्क छोड़ना अपने पेरेंट्स छोड़ना और बहरहाल जहाँ जहाँ पे नान नमक जिस मुल्क का खाते हैं तो वो फिर वो मुल्क भी अपना ही होता है तो फिर फिलहाल लोगों का जो है बिहेव बहुत अच्छा है और हमने तो ताजिकों की तरह माहौल बनाए हुए हमसायों में भी जाना आना कुछ शेयर करना तो ये चीज जो है मेरे से कदम पहले आगे बढ़ी थी मतलब मैं पहले उनके घर जाना आना किया और उसके बाद ना जो हमारे नेबर्स होते हैं वो भी आते रहते हैं आपको पता है तो है इस्लामिक कंट्री में कोई मतलब इतनी एक दूसरे के घर नहीं जाता है जिस तरह ताजिकिस्तान में आजाद माहौल है लोगों को मतलब जाना आना होता है मिलना होता है इस तरह यहाँ नहीं होती है लेकिन जब मैंने कदम पहले बढ़ाई है उसके बाद माशाल्लाह मेरा आना जाना है ऐसे ताजिक माहौल जैसे मैंने यहाँ पे भी बनाई है
0: दो अलग देशों से आए दो नौजवान एक ताजिक लड़की और एक पाकिस्तानी लड़का उनके बीच भाषा का फर्क था संस्कृत का अंतर था लेकिन दिलों के जुड़ाव ने हर दूरी को कम कर दिया उन्होंने एक दूसरे के रीति रिवाज को समझना शुरू किया एक दूसरे के परिवारों के बारे में जाना और जीवन के प्रति अपने नजरिए साझा किए यही उसकी प्रेम कहानी शुरू हुई उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी युवक से हुई एक नेक दिल समा करने वाला और समझदार इंसान उनका रिश्ता आपसी समान और समाज पर आधारित था हालांकि उनके बीच सांस्कृतिक और भाषाई अंतर थे लेकिन प्यार और भरोसे ने हर मुश्किल को आसान कर दिया पाकिस्तान जुनूना का दूसरी मातृभूमि बन गई है वहां उनके हस्बैंड है वहां उनके बेटे है वहीं उसकी बाकी जिंदगी है लेकिन कहते हैं कि ताजिकिस्तान हमेशा के लिए उसके दिल में रहते है क्योंकि ताजिकिस्तान उसकी मातृभूमि है वहां उसकी बचपन गुजरा था ताजिकिस्तान में उसके परिवार रहते है
1: मैं ताजिकिस्तान को बहुत ज्यादा याद इसीलिए करती हूँ कि वो अलबत्ता वो मेरा मुल्क है वहाँ मैं पैदा हुई हूँ और जो इंसान जहाँ पैदा होता है उस जगह को कभी भूल ही नहीं सकता और वहाँ का वेदर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है मौसम एक बहुत साफ सुथरा है और एक अजीब सी खुशबू ही है अपने मुल्क की वो कहीं पे भी नहीं मिलता है इंसानों को और फिर जो है ताजिकिस्तान को ज्यादातर उसके साफ होने की वजह से याद करती हूँ बहुत साफ सुथरे कंट्री है इस वजह से बहुत याद करती हूँ भूलना तो बिल्कुल नामुमकिन है मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं 3 बेटे हैं 2 बेटियां हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह घर में ताजिकी में बात करते हैं मतलब और मेरे जो हस्बैंड है मेरे जो शोहर है वो भी ताजिकी बहुत अच्छे से जानते हैं हम बिल्कुल कहीं पे भी जाते हैं तो हम फारसी में बात करते हैं, ताज के गाने सुनते हैं, तो इसमें ये होता है कि बच्चों को भी नॉलेज में इजाफा होता है, मतलब ताजिकिस्तान के बारे में हर गाने को सुन के मीनिंग भी पूछते हैं। ऐसे करते करते इन्होंने सीख भी ली है, काफी जो सिंगर्स है उनके नाम भी जानते हैं, जैसे निगीना अमन कुलवा है, इनको बहुत अच्छा लगता है, तो काफी सिंगर्स को पसंद भी करते हैं, सुनते भी हैं।
0: ये कहानी सिर्फ शादी की नहीं, ये कहानी हिम्मत, दिल के फैसले और एक महिला की ताकत की है। उस ताजिक लड़की ने साबित किया कि प्यार सीमाएं नहीं जानता है और इंसान दुनिया के किसी भी कोने में अपनी पहचान को संभालते हुए खुशहाल जीवन बना सकता है। वो बचपन से ही हिंदी पाकिस्तानी की भाषा और संस्कृति से बहुत प्रेम करता था। भारतीय संगीत के मधुर धुनी, रंग बिरंगे रीति रिवाज और पारंपरिक वस्त्र उसके दिल को मोह लेते थे। वो बड़े उत्साह और विशेष रुचि के साथ हिंदी भाषा सीखने की कोशिश करते और इस देश के इतिहास तथा परंपराओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करती थी। भारतीय पाकिस्तानी फिल्में और दिल को छू लेने वाले गीत उसके लिए प्रेरणा और आनंद का स्रोत है। इसी सच्चे प्रेम ने उसके मन में भारत और पाकिस्तान की यात्रा करने और वहां की संस्कृति से निकटता से परिचित होने का सपना जगाई और यहाँ में जुनूना इस प्रकार कहती है।
1: बचपन से मुझे मतलब बहुत शौक था हिंदी लैंग्वेज सीखने की, तो मैं बहुत छोटे उम्र में हिंदी में बात करना शुरू कर चुकी थी। इस शौक की वजह से मैंने ऐसी दिल लगाई, रोज पता नहीं मूवीज देख के, इनके हिंदी सॉन्ग्स सुन के, फिर मैं ये लैंग्वेज जो है खुद से सीख चुकी थी। यूनिवर्सिटी आने से पहले मुझे ये हिंदी आती थी, मैं हिंदी जबान में गाने भी लिखती थी, पोइट्रीज मतलब लिखती थी, और मैं अपनी अपी को सुनाती थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ वही होती थी जो मुझे ट्रस्ट करती थी, यकीन करती थी कि हाँ जी ये सीखना चाहती है और ये आगे बढ़ना चाहती है लाइफ में। तो मुझे बहुत पसंद था कि मैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान विजिट करूं। मेरा नक्शा तो ऐसा नहीं था कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं विजिट करना चाहती थी, एज अ ट्रांसलेटर जॉब करना चाहती थी। तो फिर मैं 2005 को ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया था, तो फिर मैंने फेल हो गई थी, मैं पास नहीं हुई, और मुझे जबान इतना पसंद था कि मैं वापस मास्टर जाना नहीं चाहती थी, कि मैं अगर जाती तो मैं आगे बढ़ ना सकती। और फिर मैं हिंदी एम्बेसी में आई थी और वहाँ पे मैंने हिंदी कोर्सेस किया, अच्छा सा मैंने हिंदी को फिर दोबारा जो है सीखने की कोशिश की है, मतलब ग्रामर के तौर पे। मुझे तो वैसे बोलना आती थी, जब मैं खुद से हिंदी सीखी थी तो फिर जो है ना ग्रामर की मिस्टेक मेरी बहुत ज्यादा होती थी, तो तब मैंने इंडियन एम्बेसी में जो है मैंने उसको क्लियर किया है। उसके बाद मैं 2006 में दोबारा मैंने एडमिशन दिया, अल्लाह का शुक्र है मैं जो है पास हो गई। मैं पढ़ते पढ़ते मतलब पता ही नहीं चला कि जब, तब तो मुझे लैंग्वेज आती थी जब मैं एडमिशन लिया था, और जब हिंदुस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जब हमने इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़े, इनके मतलब कल्चर के बारे में पढ़े, तो मेरा जो तवज्जो है ना ज्यादा बढ़ती रही, दिन ब दिन मेरा जो है, मेरा जो चाहत था कि मैं इन्हीं दो मुल्कों में विजिट करूं। फिर अल्लाह की तरफ से ऐसे हुआ कि हम लोग का नसीब, मतलब अल्लाह की तरफ से मेरा नसीब बना और मेरी जो है यूनिवर्सिटी के बाद मैं, मेरी शादी होगी, और मतलब शादी तो मैं जब सेकंड ईयर की थी आई थिंक मेरी शादी हो गई थी, और शादी के 2 साल बाद फिर मैं आके, मैंने एकेडमिशिस के लिया था ना, वहाँ पे छुट्टियां लिया थे 2 साल के लिए, तो उसके बाद जो है मैंने आके दोबारा अपने स्टडी जो है रिन्यू करवाई, दोबारा मतलब स्टडी कंटिन्यू कर दिया, फिर जो है मैंने कंप्लीट कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। और बस यही जो चाहत है हिंदुस्तान की जबान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है, इसी चाहत ने मुझे यहाँ तक पाकिस्तान तक पहुँचा दिया। और मैं आपको यकीन करें, मैं ये आसानी से नहीं कह रही हूँ, बात ये होता है कि बहुत सारे ऐसी और कंट्रीज में, जैसे कजाकिस्तान है, जैसे उज़्बेकिस्तान है, और रशिया से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ख्वातीन हैं जिनकी शादी यहाँ हुई है, और वो लैंग्वेज सीखे बिना जब इस मुल्क में आ गए, इस माहौल में वो रह नहीं सके, काफी लोगों की मतलब डिवोर्सेस भी हो गई है। लेकिन मेरा ये हुआ कि मुझे मेरे शौक की वजह से मैंने यहाँ पे सब कुछ जो है दरगुजर करके, अपने मतलब लाइफ में जैसे ऊंच नीच होती है सब कुछ बर्दाश्त करके, मैंने इसी की चाहत के खातिर यहाँ मैं रह सकी, मतलब अपनी लाइफ जो है आगे बढ़ा सकी। बहुत अच्छी लाइफ है, अपना घर है, और जो है ताजिकिस्तान में जाती रहती हूँ।
2: میرے پیرنٹس کبھی ادھر آ جاتے ہیں میرے کافی دوست آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے تاجکستان سے تو یہ بہت بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے خوشی ہے بہت بہت خوشی ہے کہ مطلب جب تاجکستان سے کوئی آ جاتا ہے ہمارا جو ہے زیادہ زیادہ جو ہے ٹائم اپنوں گزر جاتی ہے بہت خوشی کی بات ہے
0: جب انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا تو یہ آسان قدم نہیں تھا چھتر جیوان میں شادی کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ساتھ ہی انتراشٹریہ وواہ ہونے کے کارن پریواروں میں چنتا سوابھاوک تھی لیکن ان کے ارادے مضبوط ہے انہوں نے اپنے ماتا پتا کو سمجھایا کہ ان کا رشتہ صرف بھاوناؤں پر نہیں بلکہ سمان بھروسے اور بھوشیہ کی ساجھا یوجنا پر آدھارت ہے شادی سے پہلے جنونا کی ماں اس کے لیے دعا کر کے کہا ہے کہ میری بیٹی کبھی نہ بھولو کہ تم تاجک لڑکی ہو اور سبھی کو اپنی تاجک مہمان نوازی کو وہاں دکھا دو
1: جب میری شادی پاکستان ہو رہی تھی نا تو میرے ابو نے مجھے ایک نصیحت کیے تھے مطلب ایک ایڈوائس دیے تھے کہہ رہے تھے بیٹا آپ نے ایسی اچھا بیہیو کرنا ہے آپ نے تاجکستان کا تربیت دکھانا ہے تاجکستان کے کلچر دکھانا ہے وہاں پہ اگر آپ اچھا بیہیو کرو گے تو پورا پاکستان کو ایسے لگے گا کہ تاجکستان کے سب لوگ ایسے ہی ہیں اگر برا بیہیو کرو گے تو ان کو لگتی ہے کہ تاجک برے ہیں تو اس بات نے مجھے اتنا ہمت دلایا کہ میں نے اس بات کو ہمیشہ اب تک ہمیشہ سوچتی رہی ہوں اور عمل کرتی رہی ہوں کہ میں جو ہے نا اچھا بیہیو کروں گی اچھا بولوں گی اچھا مہمان نوازی کروں گی لوگوں کو جو یہاں سے میرے گھر سے خوش ہو کے جائے اور جب بھی اگر آپ جب سے 15 سال سے جیسے میں یہاں ہوں اگر کسی سے بھی کسی بھی نیبر سے کسی بھی رشتے دار سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جو ہے جونونا کیسی رہتی ہے یہاں پہ اور یہ تاجک آپ کو کیسی لگی ہے تو آپ کو یقین کرے ہر کوئی لوگ آپ کو سلوٹ کرتے ہیں مطلب یہاں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار تاجک لوگ اتنے مہمان نواز ہے اتنے اچھی بیہیو کرنے والے اور خاص کر کے یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں دل سے مانتے ہیں کہ تاجک جو لوگ ہیں دل کے بہت صاف ہے اور جھوٹ بالکل نہیں بولتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا میں جو ہے اتنے سال سے یہاں پہ لوگوں کو اپنا بنا کے رکھا ہے اسی بیہیو کی وجہ سے کہ میرا دل صاف ہے میں سب سے پہلے مہمان نواز ہوں اور میرا گھر الحمدللہ بہت سارے لوگ پورا دن آنا جانا ہے جیسے تاجکستان میں ہوتی ہیں جیسے ریلیٹیوز آنا ملنا جلنا تو میرے صرف اس بیہیو کی وجہ سے اور میرے ابو کے ایڈوائس کی وجہ سے جو میں آج کل کیری کر کے آ رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہوں گی اور تاجکستان کا نام ہمیشہ روشن کراؤں گی انشاءاللہ تاجکستان زندہ باد آباد رہے خوش رہے اور اللہ حافظ
0: پاکستان میں جیوان اس کے لیے صبر اور انوکولن کا بڑا سبق بنا وہ گھر میں تاجک ویانجن بناتی ہے اپنی سانسکرتی پرمپراؤں کا سامان کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس کے بچے بھی اپنی ماں کی سانسکرتی سے پریچت رہیں شادی کے بعد وہ اپنے پتی کے ساتھ پاکستان چلی گئی ایک نئی دلہن ایک نئی زمین اور ایک نئی زندگی آج وہ دو دیشوں تاجکستان اور پاکستان کے بیچ دوستی کا پل ہے اپنی زندگی کے ذریعے وہ کہتی ہے کہ جب سمان پیار اور سماج ہو تو فرق رکاوٹ نہیں بنتے بلکہ دنیا کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں آج وہ دو ملکوں کے بیچ محبت اور سماج کی مثال ہے تاجکستان اور پاکستان کے رشتے کے ایک جیوت کڑی پیارے سننے والوں یہ تھے ہمارے تپانی پیار اور تقدیر کی کہانی پیار جو سرحدوں سے آگے تھا ہمارے ریڈیو کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے تاجکستان اور وشو کی گھٹناؤں کا وشلیشن اور سمیکشا نئی بہو راجنیتک پرکریاؤں پر وشیشگیا چرچا اور راجنیتک بحث کو ریڈیو آواز تاجک ہندیانو بہا کے 105.5 FM سے سن سکتے ہیں